बंध नित कर है चरण कमल हृदय सिमराय सत बिनहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होई उस पुरुख का नाही कदे विनाश जागे मन प्रगटे गुणतास।

सर्वयोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंड उड़ताव है सो तन हर सेवा ते पाव है। जिस सुख को नित बख्श मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जे सोभा को करे भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी। अन को पावे रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान जब नानक दरगह प्रवान। मन प्रबुद्ध हर के नाए।

ना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मनमीत, निर्मल होय तुम्हारो चीत, चरण कमल रखो मन माहि, जानम जन्म के गिल बिक जाहि। आप जप हो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गद पावो, सार भूत सद हर को नाम, सहज सुभाय नानक गुण गाव। गुण गाव त्रियुत्र समैल, बिन से जाय हुम बिक फैल, होय चंद बसें सुगनाल, सास ग्रास हर नाम समाल, शार से आनु सगली मना, सा संग भव सच तना। हार पुनी संज करो व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार, सर्व निरंतर को देख, कहो नानक जाग मस्तक लेख।

कहिए चेरा। विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपने गात जनु आप। जय है अशल अशेद अभेद सुमाया ऊहा किसें व्याप्त माय। आप से को आप है आदेश देह गुण का नाही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप आपतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हार। वह बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आप सुगो पे पहुंचा। जय आप रच प्रपंच कार तेह गुण में किनो विस्तार।

दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखयान आपन खेल आप कर दिख है खेल संकोच तो नानक कह जय अवगत भगत आप जय बसरा पासा संत प्रताप दहूं पाक का पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी अप है कौतुक करे आनंद जोग आप रस भोग निर्जोग

भरजन साथ गुणिदान बिनत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने करतब जन आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जियन बोपांत जो जुर चुत सहत आत जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लग हर कै नाय तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ परम पद पाई

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सुवारी साध संगत जी, हुण समा होया शामां दे रह रसा जी दा, आहो बाणी सरवण करदे आ जी, होईआं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया।

रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलक आखण पाहे, वड़ा ना होवे घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवे सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए।

राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सत गुर सत पुरखा, बिनौ करौ गुर पास हम कीरे किरम सत गुर शरणाई।

राग आशा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतोह जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी से जान जुग मैं सुख वासी।

से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता।

तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ा है।

रहाओ। नाहौ जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह कर सब हूँ।

जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाह।

काची नत नह पहव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा।

तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहू फूल राजा हवे बैठा कहू सिमट पहो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दोष

पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला,

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

पाउड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पाउ जल बिखम असगा हो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवां। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतिया दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वाथ दे। जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवां।

जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समरका है। गुरु नानक लही त्या है, व्यंकट गुर ते अमरदास रामदास से सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याठ सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया कारण ओ निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार तैंतर के खालसा से। बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया जपिया जना नाम जपिया बन चख्या दे चलाई ते वाहे देख डेढ़ कीता तेना प्यार त्यार नहीं कमाई का त्यंतर के। बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंह सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बन कटवाए कोपरिया लवाइया चरखड़िया ले चढ़े आड़ न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके संस्था सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई का त्यंतर के। बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां सबद गुरुद्वार का त्यंतर के। बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आमण का सद का सर्व सुख होवे। जहां जहां गुरु खालसा साहब तां रचिया आए देख देख की फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन इशनान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पद के रखे आप वाहे गुरु। गुरु जी बनवाज पंथ सदा सहाई दता जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ नछोड़ा गया है उन्होंने खुले दर्शन की दार से सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो। हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ने दार पिता जी हो आपके चरण कामों अरदास पिता जी आज बख्शे दार जी हो आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के पाठ संगति रूप में दार पिता जी बख्शिश करो। उपरंत आप जी दर कर सेवा दार जगबीर सिंह नत बीबी पैम कौर नत अपनी बच्ची श्रीनाथ जन्मदिन की खुशी दार जी जिन्होंने आपकी पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के पाठ करवाए ने उतार कृपा करो बख्शी करो। दोवें सुखमनी साहब के पाठ करते हैं उतार जी परिवार तो सेवा करते हैं हुईया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रभाव करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदी कृपा करो अगो तो शुद्ध पितर बाणी चाणी बाल बुद्धि बख्शिश करो। गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो गरीब नवाज जी परिवार वालों आप जी पितर माले आदर अंगीकार करो सेवकों के लोग पढ़ते टको संगत वास्ते पितर कलाम से देखा तेरे हाथ उतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साहब संघ की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जा पितर नाम जपे बख्शी करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव लई रखा बख्शी करो जी। गुरु की विवाह कृपा करो परिवार वालों लंगर की तोड़ सेवारियां प्रवान करनी विवाह बख्शिश करो परिवार वालों बेअंत मेहनत माए सेवा चरना प्रवान करो सेवकों ने कमाइया सफल करो कौरवा जी वादे चल कामयाब बख्शिया चरना दरवाजी बनाओ दतार कृपा करो जी। बख्शिश कर लगी विवाह बच्ची सरीना तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौम की आग्ञा कार बख्श करने दतार बच्चे ने गुरसिखी दाल बख्श करके और उच्ची विद्या दाल बख्शो सोनी जामा बख्श करने दतार बच्चे ने सारी जिंदगी वास्ते तरक्या बख्श करने की बात करो मेहनत दतार बख्शे रस्ते पातशाह जी सारे नत परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चाटी कला करनी शुभकामना पूर्ण कर दतार परिवार में एकता सुभाग प्याज बख्शे करके सत लोग दाल बख्शो परिवार में सदा चरना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शे करने दतार कृपा करो परिवार दिया सदा शुभकामना समाता पूरी करनिया सदा अपने चरण सेवा की दात बख्श का निर्भाल करो दाते इलाज बंद रखो परिवार की हर प्रकार की रक्षा बख्श निर्भाल करो बख्शे करो परिवार दारिया शुभकामनावं अरसा मुरादा पूरी करनिया अरदासा चरणा प्रवान करने दार कृपा करो दातियों की आपलाज बंद रखो जी। गुरु जी महाराज बख्शिश करो अमृत वेद लैके दारते हैं साफ संगत जी दार प्रवान करो घड़िया खिलाओ संगत दारते तेरे फुल बेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया संघा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी गला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी की बालता करो दार कृपा करो गुरु महाराज जी अब दर का सेवादार काका रोहित बच्ची करणजोत कौर पातशाह जी व्याह की तरीक निश्चित होने की खुशी में परिवार वालों
ગીરવા સેવા હરી આચાર્યના પ્રવાન કરો, બક્ષી કરો તથા સેવ કાંધે ધંધે કાર સ્વાગત ધન્યવાદ નિભાવો, આપને સરપંચ આભલાજ પત્ર કરો તથા સેવ કાંધે સારે કાર્ય નિર્વિઘ્નતા સાથે પૂર્ણ કરી કૃપા કરો, આપને સરપંચ આભલાજ પત્ર કહો જી પાછાજીઓ કાકા શાન સૈની જન્મદિન ખુશી પરિવાર બનો, $21 પેટા કીધે પ્રવાન કરો હાર બક્ષી કર દે, કાકા શાન સૈની નું તંદુરસ્તી બક્ષો, લંબી આયુ બક્ષો, ગુરસિક્કી નામ દાદુ બચ્ચે નું ઉચી વિદ્યાની દાદ બક્ષો, સારે પરિવાર તંદુરસ્ત ચાંદી ચાલી કળા કરો, કમાઈયા સવર કરો દાદી આપણા હાથ રખો જી ગુરુ ગીર કૃપા કરો દતા મેરા કર્યા દૂધ રખ બેઠી સંકતાની પ્રવાન કરો ઘણીયા લેખે લાવો આપણે બક્ષિત કી દેવને બક્ષી શા બક્ષી ને સંગતા આદિચાર્યના ધન્યવાદ કરી દે, શુક્રિયા અદા કરી દે, બેહદ ઓનલાઈન ગુરુકારનું ગુરુકાર સેવા સિંગલ થયા સંગતા માયા પેટા કરી ચરણ પ્રમાણ કરો, બક્ષ્યા સમજે અહીંયા સવળ કરો કાર્ય વાત બધા સાર સંગતાની શુભકામના સમય પૂર્ણ કરો જી તાર બક્ષી કરો મીરા ને કર્યા ગીરવાજ વેણ બોલ્યા સાહેબ કે જાન રાખે સાગી તાર મેરા કર્યા સેવા પ્રમાણ કરો માહી બક્ષો પેતર નામે બક્ષી કરે પરંત આજે સમય કદાચમતા વાસ્તે આગા બક્ષો ગીરવાજ સેપણા જો આચાર્ય સેવા હરિયાણા ચેપા આચાર્ય સેવા પ્રવાન કરની આજે સારે કાર્યો પૂર્ણ કરને સે પ્યારે મેરો દિલ મેં નામ દેતા વા નાનક નામ ચડતી કલા તેરે પાણે વાહેગુરુ જી કા ખાલસા ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

शून्यात् सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

थियो संतन की रेण, जित लब्बी सुख दातार, पौड़ी वेण कर्मा हर जियो ना पाई है।

साहेब जियो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लावो।

0: अच्छा
1: मुझे इंग्लिश ज्यादा चीज इंग्लिश के बीच एक मिनट बच्चे आ गया
0: अच्छा

ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगलकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक, और तारे जो अंतर नाम सर्व मै पिख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्कार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस, मन मह प्रीत निरंजन दरस, पर त्रै रूप न पिख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने कहू के निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा आपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै निह कर्म, तिस बैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओ बैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मान तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मै सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुख मै जानै अस्थूल, चौह वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौह वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगध पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हार खो तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरेउ आप होए अनत तरंग, लखि न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहि निहाल, श्लोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट वन भ्रमहे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिस्र होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्भ को है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लाव हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस ने सुतारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी

तप अष्टपदी। जब अकार एक आशना दृष्टि था पाप पुन तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कह के सह व्यापत, जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम, आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी, जब एक हर आगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपने ज्योत तरे तब कवन निडर कवन का तो डरे, आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल छिद्र लगत कहो कीस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है पूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहां को चीन, जब अपन आप उरता रहे तौ सगन अप सगन कहा बिचार है, जय अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, बेसमन बेसम रहे बेसमाद नानक अपनी गत जान हो आप, जह अशल अशेद अपेद समाया उहां किसे व्यापत माया, आपस को अपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जह अपन आप तियारा तह कौन कथ है कौन सुने हारा, बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा, जह आचियो प्रपंच आकार तेहु गुण मैं की नो बिस्थार, पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत, आल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पहपार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की बख्यान, आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तव नानक एक है, जह अवगत भगत तह आप जय पसर पसार संत प्रताप, दोहु पाख का आपे तनी उनकी शोभा उन्हु बनी, आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निर्जोग, जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै, बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै, सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार, अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आपे एको आप बिसथार, जात सुभावे ता सृष्ट उपाय अपने पाणे लय समाए, तुम ते भिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए, जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सब ताकै हा दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखै तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मन हो बिसारै, तिस तज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जान हो साथ, गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार, पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जमी रहे व्याप,
प्रत पाले जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जानिया जान लागा हर एक नाए तिसकी आस न वृथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इसते उपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर आन दिन पूजा है गुर के पैर ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करहु विचार दुर्लभ दे का करहु उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्राप पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावह मन इच्छे नानक फल पावह हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसाए तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहु व्यापारी दरगाह निभाए केव तुम्हारी एक घाट एक रखू मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस्ते दूर कहां को जाहे उबरै रखन हर ते आए निरपाओ जपाए सगल पाओ मिटाए प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभ रखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचन हार सर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपति संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद कान हत तहनाद कह न जाई आचार्य बिसमाद तिन देखिया जिसे आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घाट घाट घाट घाट व्याप रहया भगवंत तरण महे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रत पाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस ते पै नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससि अर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाये गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विश्वास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय तब सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत अप तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक ओंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आपे खनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मद अलिपतो रह जो किश कहना सो आपे का है आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां लए समाए इसते होए सुनाही बुरा उरै कहो किने कश करा आप भला करतूत अतने की आपे जाने अपने जी की
ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਅਨੇ ਤਿਆਗ ਹੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰ ਹੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੋਨ ਤਕ ਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂ ਤੁਕੈ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ਸਰਣ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਣੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹਤ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਹਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ

तिहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धर तबल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगा, सुनया दुख पाप का ना, सुनया ईसर वर्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद, सुनया योग जुगत तन भेद, सुनया शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगा, सुनया दुख पाप का नाश, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया सटका इसनान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगा, सुनया दुख पाप का नाश, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सिख पीर पातशाह, सुनया अंधे पावह राह, सुनया हाथ हुए सगाह। नानक भगता सदा विगा, सुनया दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जी को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जी को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जमके साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जी को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ सो प्रगट जाए, मन्ने माग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंधु, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावह मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवै न भिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख ता प्रत्या जिन सूत। जे को बुझै हुए सचियार, तबले ऊपर किता भार, धरती होर पर होर होर, तिस्ते भार तले कवन जोर। जी जात रंगा की ना, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता हुए। केता तान सुवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ इको कुआओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, आर्या न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचारु, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर भार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, गम गम असंख लो असंख कह, सिर भार होए अखरी नाम करी सालाह, करी ज्ञान गीत गुण गाह, करी लिखण बोलण बाण, कर सिर संजोग उखाण। जिने लिखे ते सिर नाहि, जि फरमाए तिव ते पाहि, जीता कीता तीता नाओ, विण नावै नाहि को ताओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तंदे, पानी तो तै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ हुए, दे साबून लइए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओ तो पहनावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो, तीर्थ तप दया दत दान। जे को

धंध है, बंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंत प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंगहर्ता, सर्वंगकर्ता, सर्वंगप्राण, सर्वंगत्राण, सर्वंगकर्म, सर्वंगधर्म, सर्वंगयुक्ता, सर्वंगमुक्ता, रसावल छंत प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी ध्यान है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनी महर जायक रही महर समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है कि स्वर्बुल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीस है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमीशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विपूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पांज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंडो अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिशविश अपंड जल थल महंत दिशविश बेअंत अन पवना त्रितर तुरास आजान बाहु एक कैसे दाहु ओंकारात कथनीय नाद खल खंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नामु अनचिज गातु अजिज न बातु अन चंज गातु अन रंज बातु अन टुट पंडारु अंडट अपारु आडीट धर्मु अत टीट कर्मु अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अरकालय है कल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबा कृत है अमृतामृत है नरनायक है कलकायक है विश्वंबर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवपंजन है यरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र

नमो रासं तामसं सांतरूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रेय नादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुलकु निंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करीमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं वेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं वेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदा दिख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे एते भय तु कहा पै भूप तंत को नंग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिने अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सुसा सुनांदुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अभिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैद धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराधप जोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
नाथ फिरियोलिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो दास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहूं सुन लेहु सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछाकु शीश निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु

मैं पाया। हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कर सब सुवारना, सब ना गल्ला सुमरत सुवामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तीर, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया एह वडे आईया। कह नानक सुनहु संत हो शब्द धरु प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच सब तित घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया पंच दूत दिवस कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, सच लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एस नो होर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिन का मुँह तुटा तिनका सब सच्चा सुवारिया। कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे बेचारिया। एक भरम भूले फिर है दा दिसिक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कथ की करह कहानी कथ केरी कित दुआरे पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर को हुक्म मन्या पाईऐ, हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी। कह नानक सुनहु संतो कथिहु अकथ कहानिये, मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई ना पाया किने। तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी, जिनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी, तिने कीती जिन टगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाली, ए कुटम तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई है। ऐसा कमूले ना कीचै जितंत पछोताई, सतगुरु का उपदेश सुन तू हो वह तेरै नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाली,

कहता विखै सब तू है जिन जग तू पाया। कहे नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया। सोर नर मुण जन अमृत खोज देसु अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुद उपायक वेख प्रसने आया। लभ लुभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा दिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिकु मार्ग चलना। लभ लुभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना। कन्हो तिखी वालो निकेत मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाही तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाही तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहि कर कृपा। जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्या वहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहि। कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो भावे तिवै चलावे। हो सोहेला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। हे उ तिन कह मन वसिया जिन धुरो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया। कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जिना जिनी हर त्याया हर त्याया। पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटम सह स्यो पवित संगत सुभाया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसा जीव मलीन है कि संयम धोता जाए। मन तो शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए। कह नान गुर प्रसादी सहज उपजाय सहसा इव जाए। जी हो मैले बारो निर्मल जी होता मैले तीन जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है जो बेता लिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तीन जन्म जुए हारिया। जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी गूढ़ केशोर पहुंचे नाही। मन सा सत समाणी जिन मृतंजनी कटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले। जी को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई। जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आय अंतरात्मा समाले। आप छठ सदा रह परण गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुरु ते विमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होरथे कोई पुछो बिवेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए।

गावे सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैर वाणी। कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। सब सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाउ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सकता पाए। कह करता आपे हुकुमरताए, हुकुमरताए आवेख गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन हुआ मुख शब्द मन वसाए, गुर प्रसादी तोड़े बंधन हुआ मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे, कस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए।

प्यास न जाए हूर्त कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बोड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए कह नानक हूर अन रसा विसरे जाहर वसै मन आए हे शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी तातु जग मह आया हर जोत रखी तुद विच तातु जग मह आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी भुजिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी तातु जग मह आया मन चाओ भया प्रभया गम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करन कारण जोगो

हर मन न वसाया गुर प्रसादी, हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया। हे नित्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया इहो वि संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर इक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्ट होय। हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुनने नु पठाए, सच है सुनने नु पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस मानी सचल कविडानी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो बहु, सच है सुनने नु पठाए, हर जीव गुफा अंदर रख कह वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां नौ द्वारे प्रगट किए, एक ना दसवां द्वार दिखाया। वाजा व पौन बजाया गुरुद्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नव नव निध तिस दांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया। इहो साचा सोहिला साचा कर गावहु, गावहु ता सोहिला कर साचा, जिथे सदा सच त्यावहि सचो त्यावे, जात दुभावे गुरमुख जिना बुझावे। इहो सत सबना का खसमै।

लायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु माने हो, गुरु ग्रंथ जी माने हो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बूच है खोज शब्द में।

मैं हूर थाओ नाही जिस पह करूं बिनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखु राखनहार दयाला नानक घर के गुले सतनाम।

हारतौ दर्शन कहताई, चक्खड़ झागी मिह वरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर हुवै बहु खारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल

मन इक्को सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृपता से, अनद खसम कै भाणे जियो, हथी दित्ती प्रभ देवनहारे, जन्म मरण रूप

सो सच मंदर जित सच त्याई, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई, सा धरत सुहावी जित वसह हर जन, सच्चे नाम विटहो कुर्बानो जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवह जन तेरे, सच

भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया, बिन से आलस रोगा जियो, जा कै गृह नव निध हर भाई।

सो गुरमिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिसकै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मिले, जिसकै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बूठे, विन परमेश्वर सगले मूठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाई है, जिस सिमरत वर निह चल पाई है।

साकत कूड़े सच न पावे, दुबदा बाधा आवे जावे, लिखिया लेख न मिटे कोई, गुरमुख मुख

सच चित लाया, गुरमती सहज सुमावणिया रहाउ, काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी महल न पाए, अन दिन जल्दी फिरे दिन राती, बिन फिर

वाले मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जागाए गुरमत सो जी पावणिया अप्यो पीए सो भरम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गत पाए।

रसना हर रस राती रंग लाई, मन तन मोहिया सहज सुभाई, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिला बनिया, जिसे अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहज

कोई गुरमुख विखै मोर्चा न लागै जाहौं मैं सुखै अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुरशब्दी सच सुमावणिया बिन सतगुर केहो न देखिया जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाए आपे आप आप मिल रहिया सहजे सहज सुमावणिया गुरमुख होवै सो इक स्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए काया

की फतेह। बेनती है सुभाग जोड़ी नू कि हुण लावां दा पाठ प्रारंभ होएगा। आप दोवें वडभागे हो जो अपने जीवन नू ग्रिस्त धर्म नू प्रारंभ करन तो पहला गुरु महाराज दे हजूर आ करके सतगुरु जी का उपदेश ग्रहण करने वास्ते एकत्र होए हो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जो सूही राग विच चार लावां सिख नू बख्शिश कीतियां हन, जिथे इन्हां लावां नू सुन के विचार के असी अपने ग्रिस्त धर्म विच प्रवेश करदे हां, उत्थे इह लावां सानू आत्मक मार्ग ते भी सहाई हुंदियां ने। जिवें शारीरिक मिलन हुंदा है, उसे तरह आत्मक मेल परमात्मा दे मेल दा भी इह उत्तम स्रोत है। सो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जो साडे ते बख्शिश कीती है, चार लावां सानू बख्शिश कीतियां ने। हर सिख ते सिखणी जदों व्याहुण दे योग हुंदा है, वह गुरु महाराज के हजूर आकर के लावां का पाठ सरवण करता है। संगत की हजूरी विच, गुरु की हजूरी विच एक दूजे के होण दा असी प्रण करते हाँ। सो आप सुभागी हो, वडभागी हो जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के हजूर तुहानू बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। दास लावां का पाठ करेगा। पहली लाम का पाठ जदों संपूर्ण होएगा, अखीरलियां पंक्तियां दो वारी पढ़िया जाणगियां। आप जी ने पहली लाम दे संपूर्ण होने ते गुरु साहब जी दे सन्मुख मत्था टेकना है, ते फिर बड़े प्यार दे नाल मेरे सज्जे हाथ आप जी ने प्यार सहित परिक्रमा करनी है, फिर मत्था टेक के अपने थां ते आके खलो जाना है। इसे तरह चार लावां दा पाठ होएगा। हर वारी आप जी ने मत्था टेक के ही परिक्रमा प्रारंभ करनी है, मत्था टेक के ही अपने स्थान ते खलो जाना है। नाल नाल गुरु के कीर्तनीय सिंह सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन भी सरवण करवाउणगे। सो संगत नूं भी बेनती है कि आप जी ने इसे तरह ही प्यार नाल बैठ के सारी गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दी मर्यादा दा आनंद मानना है। जे आप जी ने खड़े होकर के लावां सरवण करनियां हन ते मत्था टेके आप जी पहलां खड़े हो जाओ, फिर आपां लावां दा पाठ सरवण करिए जी। मत्था टेके आप जी खड़े होके लावां दा पाठ सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

कृपा बख्शिश कीती अज आप जी के हजूर काका दविंदर जीत सिंह सुपुत्र सरदार कुलदीप सिंह बीबी कुलवंत कौर अते बच्ची तलविंदर कौर सपुत्री सरदार

हथ रखना। इसे तरह आपसी प्रेम प्यार दी दात बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जीओ। इस वक्त दोहां परिवारां वल्लों आप जी नूं सुंदर पोशाके पहनाए गए हन। आप जी

चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोचा है। खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रह ना ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो

गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे तो पहला अज कुछ ऐसा विस्मादी माहौल बनया इस जगह का, इस गुरु घर का। बार तुसी वेख रहे हो कि 31 रागां दी फोटो चित्र प्रदर्शनी लगी है और उसके पेंटर ने तेज प्रताप संधु जी, जिन्होंने कई वरे ला के दरबार साहब नू फोटो शूट किया। बड़ी वड्डी सेवा है रागां दे समय मुताबक। ज्ञानी जसविंदर सिंह जी ने आके सिंह साहब ने रहरा साहब का पाठ श्रवण कराया। ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी ने कीर्तन किया, दरबार साहब की याद आ गई। और उस तो बाद डॉक्टर मनप्रीत सिंह होर ने और गुनीत जी ने इन्ना अच्छा कीर्तन करवाया। वो साडे फीमेल जड़े कीर्तनकार ने, उन्हों का रोल मॉडल ने। और जिवें बाबा जी नाल वो गल्लां कर रहे होंदे ने, मैं सोच रहा सी कि उन्हां बारे कहा जावे। सरबजीत होर ने मेरे बहुत प्यारे सुरीले कीर्तनीय वीर भाई साहब, उन्होंने उन्हों की तारीफ की है। सुरीले ही सुरीलिया की तारीफ करते हैं। जिवें बाबा जी नाल कोई गल्लां करदा अपने प्यारे नाल, इस तरह उन्होंने कीर्तन किया। और भाई साहब ने भाई बलबीर सिंह होरां दी याद ताज़ा कर दी। जदों भी इन्हां नूं वेखदे आ, क्योंकि ये जिहड़े भाई साहब नाल बैठे ने, उस्ताद रघुवीर सिंह जी मेरे नाल 1990 तों तबला असीं इकट्ठे वजा रहे हां, इकट्ठे गा रहे हां। और भाई साहब नाल इन्होंने बहुत लंबा समा सेवा की। और अक्सर इसे तरह ही सारे कीर्तन दरबारों में असी इकट्ठे होंदे सी। और अज एक बार फिर भाई साहब अखां अगे उन्हों का उही चेहरा, उन्हों का उही असीस, उन्हों दी ब्लैसिंग नजर आ रही सी। बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है। और यही असी चाहते सी जदों 4 साल पहला इत्थे वीर नरेंद्रपाल सिंह जी और प्रोफेसर दलबीर सिंह उन्हां नाल गल कीती सी। अज तुसी वेख रहे हो शांत साहब मैनू छड के उत्थे बैठ गए ने, पर इन्हां ने न्यू जर्सी विच राग दरबार करवाना है ते शिकागो विच होना है। इसे तरह ही हुणे ही इत्थे कोई कह रहा सी सियाटल भी असी करावांगे, इत्थे सैंडीआगो वाले भी सी, उह कहिंदे असी उत्थे भी शायद करवाना है। कोई कह रहा सी गावनी प्रोग्राम करवाना है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 6 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ रामदास पातशाह दे और एक शब्द है गुरु अर्जन पातशाह दा। अगर अलपकार दी कोई बाणी रचना है और राग भी कठिन है, कोशिश करांगे उसनु असी उसनु निभाउण दी। फुल्लां बख्श लेना, असीस देना,

ये जो शुक्रवार तो शुरू होकर इकती राग दरबार निर्धारित रागों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस में समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ये अज दो रागों में कीर्तन करेंगे, राग बिलावल राग धोबी। भाई साहब का समा है 12:40 बजे तक। आओ प्यार ना।